माणिक वर्मा के स्वर में अभी आपने सुनी निळोबा राय की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अब सुनाते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओ, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे राम फाटक के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए स्वामी स्वरूपानंद की रचना शंकर घाणेकर के स्वर में।

श्रोताओं, अमृता गोखले के स्वर में आप सुन रहे थे वसंत बापट की रचना। कार्यक्रम में अब सुना रहे हैं नामदेव महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है दीपक पाटेकर ने।

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था दीपक पाटेकर ने। भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आपने श्रीकांत पारगावकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र का निर्माण था। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

ನನ್ನ ಪಲ್ವಿಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ದಮ ದನಿ ಸ ದನಿ ಸ ದಮ ದನಿ ಸ ದನಿ ಸಾ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग रामकेली में सितार वादन. आज ये कलाकार हैं पंडित पूर्वायन चट्टोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं परिमल चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग रामकेली में सितार वादन, कलाकार पंडित पूर्वायन चट्टोपाध्याय.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रामकेली में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित पूर्वायन चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे परमल चक्रवर्ती। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग तोड़ी में ख्याल गायन। आज ही कलाकार हैं श्यामली सरकार। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शौमिन सरकार। ताइए सुनते हैं राग तोड़ी में ख्याल गायन, कलाकार श्यामली सरकार।
1: You were listening to a sitar recital in the Rag Ramkeli. Our artist was Pandit Purbayon Chatterjee. Accompanying our artist on the tabla was Porimal Chakraborty. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to a khayal in the Rag Todi. Our artist is Shyamoli Sarkar. Accompanying our artist on the tabla is Shomin Sarkar. Listen now to A Khayal in the Rag Todi. Our artist, Shyamoli Sarkar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग तोड़ी में ख्याल सुन रहे थे। आज की कलाकार थी श्यामली सरकार। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शौमिन सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to A Khayal in the Rag Todi. Our artist was Shyamoli Sarkar. Accompanying our artist on the tabla was Shomen Sarkar. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is RUM 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है पूर्णिमा धुमाड़े। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मारुबिहाग, सुनते हैं विलंबित कर रूपक ताल में निबद्ध है, बोल है परी मोरी नाव, और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है, बोल है नैना लगाए मैंने। साथ संगत तबला माधव मोड़क, हारमोनियम सुयोग कुंडलकर। तो आइए सुनते हैं राग मारुबिहाग, कलाकार पूर्णिमा धुमाड़े।

अभी आपने सुना पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग मारू बिहा। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे माधव मुण, हारमोनियम पर थे सुयोग कुंडलकर। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मोरी सुधलिनी और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है रे बनरा प्यारा। सात संगत तबला शंकर कुंभर, हारमोनियम चैतन्य कुंटे। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण।

श्रोताओं, अभी आपने सुना पूर्णिमा धुमाले द्वारा प्रस्तुत राग श्याम कल्याण। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभर, हारमोनियम पर थे चैतन्य कुंटे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

スタート。ドン。デン。ドン。ドン。ドン。トン、トン、デン、デン。

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार. विलंबित खल एक ताल में निबद्ध है. बोल है कल नाही पावे और द्रुत खयाल तीन ताल में निबद्ध है. बोल है दिन गए बीत सुख के. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग भटियार इन विच ही विल प्रेजेंट अ बड़ा ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल. द लिरिक्स आर कल नहीं पावे. दिस विल बी फॉलोड बाय अ छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल. द लिरिक्स आर दिन गए बीत सुख के. He is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjit Roy.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और लीजिए अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं नीके घुंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं नीके नीके शोभा देखत। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: ही कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद राग बिलास खानी तोड़ी इन विच ही प्रेजेंट्स द बड़ा याल सेट टू विलंबित एक ताल। द लिरिक्स आर नीके घुंघरिया, दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू विलंबित तीन ताल। द लिरिक्स आर नीके नीके शोभा देखत।

अभी पंडित मधुक मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन। प्रारंभ में राग रागेश्री, बोल है निरंजन निराकार, सत्संगत है पखवाज पर अखिलेश गुंदेचा, डॉक्टर अनिल चौधरी। आइए सुनते हैं पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन।

अभी अपने पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेचा का राग रागेश्री में ध्रुपद गायन सुना। आइए सुनते हैं पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन।

अभी अपने पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन सुना। सात संगत की थी पखवाज पर अखिलेश गुंदेचा ने, डॉक्टर अनिल चौधरी। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत, हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन. आज के कलाकार हैं संदीप बंद्योपाध्याय. आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बर्धन. तो आइए सुनते हैं तीन ताल में तबला वादन, कलाकार संदीप बंद्योपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी तबला रिसाइटल्स. लिसन टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल. Our artist this evening is Sandeep Banerjee. Accompanying our artist on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to a tabla recital in Teen Taal by Sandeep Banerjee.

ধাতি গেনে ধারা গেনে তাকে দিনে।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे संदीप बंदोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बर्धन। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रूपक ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं संदीप बंदोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बर्धन। तो आइए सुनते हैं रूपक ताल में तबला वादन, कलाकार संदीप बंदोपाध्याय।
1: यू वर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी तबला रिसाइटल इन तीन ताल। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग वाज संदीप बनर्जी। Accompanying him on the harmonium was Shomnath Bardhan. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the program, we now present a tabla recital in Rupak Tal. Our artist is Sandeep Banerjee. Accompanying him on the harmonium is Shomnath Bardhan.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप रूपक ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे संदीप बंद्योपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सोमनाथ बर्धन। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Rupak Tal. Our artist this evening was Sandeep Banerjee. Accompanying the artist on the harmonium was Somnath Bardhan. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा. राग है बसंत मुखारी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ झाला तत्पश्चात दो गतें. विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रत्न.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार है विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुत गत। विलंबित गत झप ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

0: This is RUM 24/7 DTH, Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है रविराज शंकर का बजाया बांसुरी वादन. सबसे पहले आप राग विभास प्रस्तुत करेंगे. मध्य लय बंदिश रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग विभास। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग श्याम कल्याण में एक रचना जो कि पग ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग कल्याण। आइए अब सुनते हैं सुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया राग माज खमाज में छोटा ख्याल। बोल है आली री मोरा मनहर लीन हूँ, जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे सुश्री लक्ष्मी शंकर का गया माझ खमाज में छोटा ख्याल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. लीजिए अब सुनिए निशेंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग यमन में आलाप विलंबित और द्रुतगत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सुपर रिसाइटल बाय श्री निशेंद्र किंजल. ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चटर्जी. श्री निशेंद्र किंजल फर्स्ट प्रेजेंट्स राग यमन इन विच यू विल हियर द आलाप followed by vilambit and drutgat, both are set to teen tal.

0: अभी आप निशेंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग यमन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति थी प्रसून चटर्जी ने। और लीजिए अब सुनिए राग जय जयवंती, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने।
1: दैट वॉज राग यमन, श्री निशेंद्र किंजल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग जय जयवंती, इन विच यू विल हियर द विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप निशिंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग जय जयवंती सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए ये धुन।
1: यू जस्ट हर्ड राग जय जयवंती। श्री निशिंद्र किंजल कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद अ धुन।

0: अभी आप सितार पर ये धुन सुन रहे थे। तबले पर संगत की थी प्रसून चटर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट धुन वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय निशिंद्र किंजल। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला श्री प्रसून चटर्जी। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल. हर दिन हर पल भारतीय संगीत प्रस्तुत है. भक्ति संगीत कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुरेश वाडकर और सहकारियों के स्वर में इस पारंपरिक रचना से.

सुरेश वाडकर और सहकारियों से ये पारंपरिक भक्ति रचना आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं उत्तरा केलकर से चंद्रशेखर पांडे की ये भक्ति रचना।

उतरा केकर के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं लक्ष्मी शंकर से ये भक्ति रचना।

लक्ष्मी शंकर के स्वर में संत सूरदास की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं अहमद रफीक के स्वर में संत मीराबाई की ये भक्ति रचना बरसे बदरिया सावन की।

अहमद रफीक के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं विवेक प्रकाश के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

विवेक प्रकाश के स्वर में संत कबीरदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं शीला वर्मा से ये भक्ति रचना।

संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, स्वर था शीला वर्मा का। आइए आप सुनते हैं मीनाक्षी मुखर्जी के स्वर में संत सूरदास की ये भक्ति रचना।